देर लगी लेकिन जीना सीख लिया, और यही जिंदगी की मेन घड़ी है। जिंदगी जो है ना आपको बहुत चीजें सिखाती है। तो चलिए सम अप करते हैं अपनी बातों को, और विराम देने से पहले एक छोटी सी हिदायत। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चले चाहे आगे बढ़े या पीछे मुड़े। जिंदगी दोस्तों वाकई में आसान नहीं होती, चाहे आप दिल्ली में हो या पामस्टर नॉर्थ में हो। फर्क बस इतना पड़ता है कि आप अपनी उस परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। क्या आप उसमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा लगाते हैं या फिर नकारात्मक? तो अगली बार जब न्यूजीलैंड की हवा आपके छाते

को उल्टा दे तो परेशान मत होइएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा और कह दीजिएगा, हे हवा ट्राई मी, क्योंकि आप एक एनआरआई नहीं बल्कि आपका एक नाम है, पता है क्या, नेवर रेस्टिंग इंडिविजुअल है, जो हर मुश्किल को पार करना बहुत अच्छे से जानता है। ऐसी ही और मज़ेदार बातें और चिट चैट करने के लिए हर ट्यूसडे, हर मंगलवार आप मिल सकते हैं 6 बजे मुझसे, और हम करेंगे कुछ ऐसी बातें जो चटपटी होंगी और मज़ेदार होंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून और सुनते रहिए MPR मानवतु पीपल्स रेडियो।